0: फयाज अहमद कुरैशी एन एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999 दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-567.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
2: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
2: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
3: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। इट्स 416-206-3200। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लजत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
4: और जनाब, विक्टोरिया डे स्पेशल है, इनके पास जाइए। आप रेडियो पाकिस्तान का वाला स्पेशल डिस्काउंट आपको देंगे। अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है चाय खाना, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, 30, रिजवे।

0: जी हाँ, ICC इमिग्रेशन, आरडी भाई, एमडी भाई, उनकी पूरी टीम ऑलमोस्ट 2 decade से, तकरीबन 20 साल से आपको सर्व कर रहे हैं। इमिग्रेशन का कोई मैटर हो दुनिया भर से, कहीं से भी आपके अजीज़ दोस्त रिश्तेदार प्यारे आना चाह रहे हैं कनाडा में, 905-461-2424 उनके रबते का नंबर है, ICCimmigration.ca इनकी वेबसाइट है। एमडी भाई आज के दिन हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। एमडी भाई, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
1: अरशद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और प्रोग्राम सुनने वाले तमाम भाई बहनों को एमडीआरडी के जानिब से, आईसीसी इमिग्रेशन टीम की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन एयर सर।
0: बहुत शुक्रिया। और अपडेट आपसे लिया करते हैं, जो चेंजेस आ रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से, कोई अच्छी खबरें हों या थोड़ी सी परेशान, मुश्किल या गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर है कहीं कहीं थोड़ी सी परेशानी भी रहती है, तो क्या अपडेट है इस हफ्ते के लिए?
1: अरशद भाई, कोई खास अपडेट नहीं है इस वीक की, एंड एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ भी आउट नहीं हुआ। सो बेसिकली पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 1800 प्रोफाइल्स ऐसे ऐड हुए हैं जिनका स्कोर 501 से ऊपर है, 501 से 600 के बीच में है।
0: अच्छा।
1: सो अगर हम 501 के स्कोर के ऊपर बात करें तो तकरीबन 16,000 प्रोफाइल आज की डेट में वहां पे पड़ा है। और इसकी वजह से आप देखें कि ये मई का मंथ ऑलमोस्ट आज 15 तारीख हो गई है, वी हैव नॉट सीन अ सिंगल ड्रॉ सो फार।
0: अच्छा, सही।
1: और लास्ट ड्रॉ जो देखा था वो हमने अप्रैल के एंड में देखा था, और वहां पे 514 के स्कोर पे 2000 इन्विटेशन दिए गए थे। तो उसके बाद हमने कोई भी इसकी चीज नहीं देखी। एंड अभी कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर है ऊपर जाएगा, और हो सकता है कि इसके ड्रॉज भी कम हो जाएं। इस हमने 11 मई को सिर्फ एक ड्रॉ देखा है, वो भी पीएनपी का, जिसमें 798 के 380 इन्विटेशंस दिए गए हैं। सो स्कोर ऊपर जाता नजर आ रहा है, बट कैन एनीबडी डू एनीथिंग? एक ही चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है जहां से स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर जरूर काम कीजिए, और पीएनपी के ऊपर और फ्रेंच लर्निंग के ऊपर काम कीजिए। इसके अलावा अरशद भाई, कई बार ऐसा भी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 2 कदम पीछे लेने भी कई बार अच्छे होते हैं। आप कैनेडा से अगर वापस आपको जाना पड़ता है तो इलीगल ना हुईजिए, कोई भी इलीगल काम ना कीजिए, 2 कदम पीछे लीजिए। आप कैनेडा से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं वापस। सबसे पहले तो आपने जो 2 साल पढ़ाई की या 3 साल जॉब की यहाँ पे, आपने अपने वर्क एथिक्स टोटली डिफरेंट कर लिए हैं। जब इंडिया में थे या पाकिस्तान में थे, जो वर्क एथिक्स थे आज की डेट में, अब टोटल जमीन आसमान का फर्क है। आपने बहुत मेहनतें की हैं, आपने बहुत अमेजिंगली यहाँ पे गुड टाइम स्पेंड किया है, आपने अपने वर्क एथिक्स आपके चेंज हो गए हैं, बहुत सारे स्किल सेट्स आपने ग्रेन किए हैं। आप इंडिया पाकिस्तान भी चले जाएंगे तो भी आप वहां पे कामयाब होंगे, बट वहां पे जाके सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए एंड आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट वापस आ सकते हैं। सो इवन जब आप देखें, जब हमने फास्ट बॉलर पेसर ने फास्ट बॉल डालनी होती है वो कितना रन अप लेता है, पीछे जाते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: इसी तरह से आपने हाई जंप मारनी होती है तो कितना आप पीछे जाके आके पोल वॉल्ट करना होता है तो कितना ऊपर जाते हैं। तो आपको, आप पीछे नहीं जा रहे, आप बेसिकली अपने आप को वापस लाने के लिए पीछे जा रहे हैं। और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी ऑप्शंस के लिए तो हमारे से एक बार जरूर आके डिस्कस कर सकते हैं, एंड वी विल गाइड यू के स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज आपको बेस्ट क्वालिफाई करा सकती है। दूसरी चीज अरशद भाई, जाने से पहले एक जरूर कहूंगा, अगर कोई भी भाई बहन, कोई भी बच्चा शादी निकाह करा कर इंडिया से, कैनेडा से, मिडल ईस्ट से या पाकिस्तान से वापस आए हैं तो प्लीज प्रोफेशनली एप्लीकेशन कीजिएगा, और उसके लिए एडवाइस चाहिए तो हमसे आके रब्ता कीजिए। और अगर बेटर चीज ये है कि आप जाने से पहले हमारे पास होके जाइए, पूरे सर्कमस्टांसेस बता के उस तरह से चेकलिस्ट लेकर जाइए और उस चेकलिस्ट के ऊपर काम कीजिए। और ये ना सोचिए कि इमिग्रेशन की कोई भी एप्लीकेशन इजी एप्लीकेशन, आज की डेट में हर एप्लीकेशन इज अ टफ एप्लीकेशन, ये सोचते चलिए। बिकॉज अगर आप स्टेटस से लूज होते हैं या एप्लीकेशन किसी वाले से वापस आ जाती है तो आपने 6 महीने से 1 साल अपना खराब कर लिया, और उस टाइम में आप ना काम करने की आपके पास परमिशन रही ना कुछ करा। तो प्रोफेशनल एडवाइस के लिए एक बार हमसे जरूर रब्ता कीजिए एंड गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन। हमें 19.5 साल का अरसा हो गया इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, 18.5 साल तो हमें 1137 डेरी रोड ईस्ट पे हो गए मिसिसागा में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस के लिए एक बार जरूर रब्ता कीजिए, एंड वी विल गाइड यू एंड सजेस्ट यू कि ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट काम कर सकती है। और आईसीसी इमिग्रेशन का आरडी और एमडी की टीम का नंबर है जी 905-461-2424, 905 461-24-24।
0: थैंक यू वेरी मच एमडी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और फिर नेक्स्ट वीक आपसे बात करते हैं। थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज़। नंबर नोट लीजिए 905-461-2424, 905-461-2424। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM।
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टी मोड। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से रابطہ कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921
0: पे। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में रابطے के नंबर 416-593-0003। ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آذان مغرب۔ اللہ